0: अंजू अंजू, आज तो छुट्टी है इसलिए माँ के साथ पढ़ेंगे। पिताजी तो सुबह जल्दी सैर करने निकल जाती है, हमें पढ़ाने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: हाँ भैया, माँ के साथ तो हम रोज नियमित रूप से पढ़ते हैं। पिताजी तो काम पे जाते हैं, जैसे ही वो हमें पढ़ाने लगते हैं उनके तो दोस्त आ जाते हैं। माँ तो हमेशा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और हमें भी पढ़ाती है। माँ तो कभी नहीं रुकती है ना भैया।
0: हाँ बिल्कुल।
2: वैसे किसकी बातें हो रही है?
1: किसी और की नहीं, आपकी ही।
0: हाँ माँ, आपकी ही बात हो रही है।
1: क्या आपका सारा काम हो गया?
2: हाँ लगभग हो गया है। मैं आ रही हूँ। दिखाओ मुझे आज किस विषय में पढ़ना है।
0: माँ, आज तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उद्गम और अंत के बारे में पढ़ाइए।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसी घटना है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगी।
0: जी माँ।
2: भारत पर अंग्रेजों की व्यापक विजय के कारण भारतवासियों को उनके अधीन रहकर शासन करना पड़ा। अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण बनाए रखने के लिए टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था शुरू की। भारत में उनका तैयार किया हुआ सामान लाकर भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर शोषण नीति चलाई। उन्होंने भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा से परिचित कराया।
0: मगर माँ, उन्होंने भारतीयों को शिक्षित क्यों किया?
2: शिक्षित होंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी बेटा, इसीलिए। वैसे मैं भी सोच रही हूँ, जिन्हें नियंत्रित कर अपने वश में रखना चाहते थे उन्हें शिक्षित क्यों किया गया। खैर ये छोड़ो, कहानी की ओर आते हैं।
0: जी माँ।
2: उन्होंने अनेक स्कूल और कॉलेज खोले जिससे अधिकतर भारतीय शिक्षित हुए। समय के अनुसार रुचि और चाल चलन की दृष्टि से शरीर भारतीय होकर भी मन अंग्रेजों जैसा हो गया। शिक्षित भारतीय यूरोप के सामाजिक विचारों को समझने लगे। प्लेटो, हीगल, कैंट, अरस्तू आदि के विचारों का अध्ययन करने लगे। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा ने उस चिंगारी का काम किया जिसने भारतवासियों को एक नया मार्ग अपनाने का अवसर दिया।
0: अच्छा।
1: माँ, मैं भी अपनी ओर से कुछ कहना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ बोलो।
1: विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और अन्य संस्कृति आंदोलनों के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इससे भी बढ़कर समाचार पत्रों तथा प्रेस ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में था तब इन आंदोलनों के बारे में उन्होंने सुना। गांधी जी के भारत आने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कई आंदोलनों शुरू भी हो चुके थे। भारत के अनेक प्रमुख शहरों में इनका आयोजन हुआ।
0: अच्छा।
1: कई वर्षों से जिन नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी योजनाएं बनाई उन्हें अंग्रेजों ने निराशा में बदल दिया, है ना माँ?
2: वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छी जानकारी है बेटा।
1: मैं पहले तो कुछ नहीं जानती थी, हमारी गुरुजी ने पढ़ाया इसीलिए थोड़ा बहुत पता है। आगे और सुनाइए माँ।
0: सुनाइए माँ।
2: जरूर। अंग्रेजों ने अपने शासन में शोषण नीति अपनाई जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षित वर्ग ने साधारण जनता के दिलों में राष्ट्रीय प्रेम जागृत किया। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम ने क्रांतिकारियों के दिल में राष्ट्र प्रेम की ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना भी जगाई है बेटा।
0: ओ, अच्छा।

0: फिर
1: उस काल के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, औरोबिंदो घोष आदि नाम उल्लेखनीय हैं। वे लोग उग्रवादी थे। अच्छा। इनके अलावा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि नरम मार्ग अपनाने वाले नेता भी थे।
0: अच्छा।
1: उनका विचार था कि अंग्रेज सरकार भारतवासियों की मांगों को राजनीतिक विचार के आधार पर पूरी करेगी।
2: अच्छा।
1: तत्काल भारत के बाहर विश्व के अन्य स्थानों में घटी घटनाओं का गहरा प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा।
0: अच्छा।
1: सन 1896 में इथोपिया के सैनिकों ने इटली पर संघर्ष कर जीत प्राप्त की। जापान द्वारा रूस पर आक्रमण, आयरलैंड द्वारा ब्रिटिश पर आंदोलन छेड़ना आदि भारत के लिए एक बड़ी शिक्षा थी। इन सब ने भारतीय नेताओं की योजनाओं को मजबूत कर दिया था। भारत भर में क्रांति की हलचल सन 1857 के मार्च में बंगाल की बराकपुर से शुरू हुई।
0: अच्छा।
1: वहां मंगल पांडे नामक एक भारतीय सिपाही ने खुल्लम खुला अपने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। अंग्रेजों ने तत्कालीन क्रांति को कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया।
0: माँ, अंग्रेज तो बहुत बुरे हैं ना?
1: हाँ बेटा, बहुत ही बुरे हैं। उनका उद्देश्य सबको अपने नियंत्रण में रखना होता है। आगे ध्यान से सुनो।
0: हाँ माँ।
1: भारत में नरमपंथी और गर्मपंथी की क्रांति की गतिविधि जारी रही। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन से अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का रूप बिल्कुल साफ हो गया। इससे पूरे बंगाल में शोक छा गया। कई स्थानों में बैठक हुई, दुकानें बंद थी और सब व्यापार ठप हो गई थी। इसके नेता हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्रपाल और अब्दुल रसूल। धर्मपंथी और गर्मपंथी दोनों ही बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन किए।
2: आंदोलन पूरे भारत में हो रहा था, है ना माँ?
1: बिल्कुल, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। दक्षिण भारत में वीओसी पिल्लाई ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का आंदोलन शुरू किया। स्कूल कॉलेजेस में अंग्रेजी सामान का प्रयोग करना छोड़ दिया। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कोलकाता में हुए अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों के विचारों में अंतर को समझाया। ये अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग में एक मुख्य ऐतिहासिक प्रसंग हुआ।
0: फिर
1: दोनों पंथ के बीच अंतर आने लगा। नरमपंथी नेता खुलेआम आंदोलन में भाग लेते रहे। 1960 में लाला लाजपत राय को पकड़कर बर्मा के जेल में रखा गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। फिर सन 1908 में विपिन चंद्रपाल को 6 महीने के लिए पकड़कर कारागार में रखा गया और बाल गंगाधर तिलक को भी पकड़कर बर्मा के जेल पर रखा गया।
2: माँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां बर्लिन में केंद्रित थी। सन 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल तथा भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में विदेशी कार्यालय के सहायता से भारत को स्वतंत्रता करने की आशा में जर्मन में IIC यानी इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी की स्थापना की गई। मेरी बात सही है ना माँ?
0: सही है, सही है। अध्यापक से जो पहले सीखकर जो आए हैं ना, अब तो मैं भी जान गया हूँ। अंजू और माँ, आगे सुनाइए।
1: फिर दिसंबर सन 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्ला सिंधी तथा बुरकत उल्ला ने काबुल में अंतरिम सरकार का गठन करने की तैयारी की। इसे जिमरमैन योजना के नाम से जाना गया। अंत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये लीग बहुत आसानी से सांप्रदायिक और पृथकवादी दृष्टियों का शिकार हो गई।
0: माँ, जब लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो उनके विचार अलग अलग होते हैं ना?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने दीपू। इसके बाद मार्ली मिंटो सुधार ने भारतीय प्रशासनिक ढांचे में

0: परिवर्तन लाने की घोषणा की।
1: अच्छा।
0: इस सुधार से नरमपंथी नेताओं को बड़ी निराशा हुई क्योंकि इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच और नफरत बढ़ा दी।
1: ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ।
0: और यही नहीं, सन 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी शामिल थे। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्लो चाकी ने अदालत में बॉम्ब फेंके। चाकी ने आत्महत्या की और खुदीराम बोस पर न्यायिक जांच करने के बाद उन्हें फांसी पर लटकाया दिया गया।
1: माँ, ये तो बहुत दुख की बात है ना। अंग्रेज लोग बहुत ही खतरनाक स्वभाव के हैं। आगे सुनाइए माँ।
0: कलकत्ता के एक घर में अंग्रेजों ने छापा मारकर औरोबिंदो घोष और उनके भाई वीरेंद्र घोष को पकड़ा। फिर भी भारत के कोने कोने में आंदोलन जारी रहा। भारत के बाहर विदेशों में भी स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधि कम नहीं थी। यूरोप के उग्रवादियों से संपर्क रखकर भारत की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी।
1: अच्छा।
0: उत्तर अमेरिका में उन्होंने भारत की मुख्य भाषाओं में गदर नामक पत्रिका निकाली।
2: ये कहानी तो सुनने में डरावना लगती है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन इससे हमारे दिल में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती है।
1: हाँ।
2: है ना भैया?
1: हाँ, होता है।
0: हाँ, इस पाठ का उद्देश्य छात्रों में यही भावना जागृत करना है।
1: जी माँ।
0: देशभक्ति से जुड़ी कहानी या किताब पढ़कर कोई बड़ा कार्य नहीं भी कर पाए, लेकिन इसका मकसद हमारे दिल में देश प्रेम की भावना जागृत करना है। और अब आगे की कहानी सुनो।
2: जी माँ।
0: कुछ समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारियों के कदम बदले, स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में नया पृष्ठ खुला और गांधी जी का आविर्भाव हुआ।
1: अच्छा।
0: उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 15 साल रहकर अंग्रेजों द्वारा वहां के लोगों पर किए अत्याचारों को रोका। बाद में उनके भारत आने से स्वतंत्रता संघर्ष में एक परिवर्तन आया।
1: अच्छा।
0: उनके दो मजबूत विचार हैं, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उपस्थित हुए।
1: अच्छा, आगे।
0: तुम दोनों ने जलियांवाला बाग के बारे में तो सुना ही होगा।
1: हाँ हाँ माँ, सुना है। जो लोगों को मीटिंग करते समय उनके ऊपर गोली चलाकर मार दिया था, वही है ना माँ?
0: हाँ बिल्कुल बेटा। उस सामूहिक हत्या के प्रतिशोध में 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसलिए गांधी जी ने अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया। और बहुत सारी बातें हैं, पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तब इस बारे में विस्तार से पढ़ना।
1: हाँ माँ।
0: मैं तो संक्षिप्त में बता रही हूँ आपको।
2: ठीक है माँ, थोड़ा बहुत आंदोलन के आखिरी दौर के बारे में भी बताइए।
0: हाँ ठीक है, सुनाती हूँ। सपने में कहीं हाथी मेरे पीछे न पड़ जाए।
1: सुनाइए माँ।
0: वैसे लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल आयोजन हुआ। वह नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर साजिश के आरोप में फांसी की सजा दी गई। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस आदि आए। उन लोगों ने जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना की।
1: अच्छा।
0: उन्होंने यही नहीं, दिल्ली चलो का नारा भी लगाया। इससे अंग्रेज सरकार परेशान हुए।
1: ये तो बहुत ठीक किया वा।
0: हाँ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया। हाँ। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु भी एक हवाई दुर्घटना में हो गई। अंत में ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतंत्रता प्रदान की।
2: और हर साल इस दिन को भारतवर्ष

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न हर साल 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है आज का प्रश्न हर साल 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है
0: अचुंब पाखुम पीबीरक पसिंगी मनुंगदगी लॉटरी तौरगा खनगतलाबा महिरोई सिंगदा अहानबा मना ओइना लुपा चमंगा अनीसुबा अमसुंग अहुमसुबा तारबा सिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंना पाखुम पीबीरकपदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूलगी ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिकचुमने इबिरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीबा नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरकउ पाखुम पीबीरकबा मतमदा एपिसोड नंबर इबिरकबा काउबीगनु प्राइज विनर दी ngasidagi chaiwol amagi matungda lawthoksegani ngasigi di mata ngasida kainaya thangnijeri pinabirasi
2: tabire radio class jamari yankhai mapan suba tangkakta class 7 ge hindi lesson 8 Tauramasi Department of Education as Samagra Shiksha Manipur ki Tengbangaloinana Sandokchaba Tauramni. Matangda Tabi Rasi Ahibam Shyam Singhi Khonjelda Shyam Sundar Sarmana Sairingba Matamishayama.

0: ngasigi chauthok chai ima manipur thorum asida pujarakli kala na kala gidamak theater gi guru ratan thiam ahum suba aroi basaru
1: apikpa uchekna mahum pikna aduga achauba uchekna mahum chauna sari piklaba uri gi marida chauraba mairel khongdrum na pali chauraba hino pambi khongnang pambi da piklaba uhaina mahi yale punamak mapu ma gi khusemni mioi bana wakhal khali sasan samulam sana wakhal khande chauraba samulam sa sahing saba kai nong sabu taibang mioi bana tethan mangami makhoi bu seasonary tinari loinari hingminari
0: pamjabana mangtha kathokpana tung induna drama amadi theater gidamak lepi rakhiba mioi ni ratan thiam jahi ahum changna tamluraba matung delhi gi national school of drama dagi graduate loiduna pognafam lamdam manipur da tholakhi wakhal gi podyom mayam ama puduna lakhraba matung da anauba drama khuputhok anauba design production gi wakhalna langtaknaba matam ama laikhi
1: हे इमा अपोपी नपारिनी ऐहाक से पलेमनी इमा नहाकना ऐन अर्जुन हाइखी पाप पुण्य पुनमक ऐन पुगनी नम दथों तमथीब लांगफम अटै कना सिरी ऐतनी सिरीब हन्न हन्ना लैतुम मोंखांग नखिबा लालोय पुनमक कना नते ऐमकनी ऐतनी ने इमा
0: इसा सिंगि सरु पोलांग मयाम तादुना लैरिबसि नंग नथोघन बनी कृष्णा सोगनरिबा लानासि नंग नखमलम बयाबनिको अरान बलि चचत खिबदि मखोइनी करिगि तौदे साप्तु मखोइदा पुमनमग मांग ताखल्लब मतुंग असिददि अमग अमग सेगाइदुना चाना रसनु थोइ थोइ बनाङा लैबना हाकनि मदुगि महैदि नंग सु सदान बगि खुत्ता लेपना सिबो ओयुको कृष्णा
1: अंधाजुग हायरिबा रतन थियामना अहानब डिरेक्शन पीखिबा ड्रामा असी चैचत कुमसिंग लिसिंग चमापन हुंफुतरामरी सेप्टेम्बर टांग मापंदा इम्फाल की जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी की होलदा उठखी महाक की अनिशुब डिरेक्शन पीखिबा ड्रामा दी प्रिंस थिएटर थांगमैबन पुथोखिबा सोफोक्लेस की किंग इडिपस ड्रामा असिन ओइखी ड्रामा असी महाराज कुमारी बिनोदिनीना मणिपुरी हंधोपीदुना सानखिबनी
0: चैसेट कुमसिंग लिसिंग अमा चमापन हुंपुतरा मंगादगी लिसिंग अमा चमापन हुंपुतरा मापन फाउबगी मतमसी रतन थियामगी कौंगमद्रब पुंसिगी तांकक ओइखी कुमसिंग लिसिंग अमा चमापन हुंपुतरा मंगादगी लिसिंग अमा चमापन हुंपुतरा मापन फाउबा लेप्तना फंबाग ड्रामा कया नुमित की अरोइब मंगालदगी अहोब मंगाल फाउबा सिंगेल इंदु सती सेम्बा लीडर सनरेम्बी चैसरा चक्र मेन दजन दाई ब्रेड अलोन मितांग बै शमु अयेक पलाई जीसु ऑफ नजरेथ लाई कुराग हिंचाबा नोंग मा इंगादा मी परेंग उचेक लांगमै दोंग लै मा येंगलिंगै खुनु काबा हनुबगी हाइकोल मथंग मथंग डिरेक्शन तौदुना कुमसिंग लिसिंग अमा चमापन मरफु फाउबदा प्रोडक्शन तरा मंगा पुथोलखी नहा उइरिंग

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी

0: के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हेलो,
1: हेलो, तुम द्रिपरा?
0: तुम थरूर है?
2: हिंग थिंग बसी द कड़ा की फोन होने आ
0: खंग दिए हे हे तो वापस दुनी तो मैंने हे तले की हेलो हेलो
2: मधु की मीटो आई न थिकल लग मधु फू बस होय दरम अते आई मुंड को की अम साले पुंग क्या तारे नुंगे में तुम पुंग अमता दोरे हाँ तम न बदौन ने आईसी बीपी या वा खलक दोरी को ए नंगि टेलीफोन सिम दो सिंदो सिंदो ति पाव ब नंग स्विच ऑफ थम नत्र दे इमुंग से कै सु नत बदु द खंग ब्रा हा नंग सु के तंग तावै तावै याम जो मंग रे बना
0: कदाई दे यारी नो
2: याम न पाइनिंग बदो याम न पाइनिंग बदो आई न स्विच ऑफ थम हु है बा नंग नंग करी गिया दे
0: अहिंसित कनाद टेलीफोन तौरी बना कनादनो हाँ कनादनो बा इस ओलांग इस है इतुम तो तुम के का हायरगा फोन दो पेट पेट पेट पेट खोंजीन का नवथर देना

आकाशवाणी इम्फाल हौसेक मतमिशे लांथोक्चरी खुदलगे हानबदा लाइटोंजम संजुक्ता देवीगे खोंजलदा रामेश्वर सरुंगबमना सैरिंगबा मतमिशेमा इसे खुदल तमजरी मयामपुना तामिनासी।

0: हेलो
1: हेलो गुड
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम नी,
1: आफ्टरनून मैम
0: गुड आफ्टरनून। फोन तो भी लगे बा कनाउ
1: आ तो
0: बनो
1: जरे बा आइजे मैम यापो सिफाल का दे रंग जीता
0: यारीपो
1: फाल का दे गी लक्षम रंग जीता
0: आ सिफाल का दे गी लक्षम रंग जीता
1: आ
0: मरुम ना फोन तो भी लगे का कई हैवी दोइनो आ हैप्पी कने गरम फिल्म की गरम विषय खन भी दोइनो
1: आ मैम जान सी ने तानी है लंदन हजर के काउंटर के स्पुकी उमानंद का पुष्पा ने का दंड थोड़ा का सब नंग लाभ न ताम न तब दिन
0: नंग लाभ न ताम ना याम न फसा बे शेनी को खन भी रली बसे
1: ने मई दे हल वे दस आराम सुम म पुष्पा ने बा
0: हो हो के शु काई दे को अमो हन ओ जरे बसु सिगुम बा अनो बे शे से तार ग को अमो पुसी से अमो कितन न थो पे आ रेंग से को
1: ने मई दे थई ही याम पा में
0: mani che si wara basu nungara basu khoi gi khoi miyoi ba hai basi di chei ni ga loina na hore ibani na ise ise adum nungai ba gi chi chei lai dani awa ba chi lai dani marum na khan bi lai ba ise ise kudol tam jara age line si nungai ki dabna marum oiraga रंजिता गवारी मपुंग फाना सानब नाम की तरह अगपिगनी अदमपु रंजिता ने खन भीरगली ब इसे इसे कांगम द्रवा फेसबुक फिल्मसी दगी रणवी थोंगना उमांदा पुष्परानी के पुनब खोंजल दा बिनो रंजम ओइनामना सैरिंग ब अमदी रणवी थोंगना ना सैरंग विशेषनी इसे इसे कुदोल तमजेरी मयापुना तामिनासी

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज,
1: मैं
0: किथा रोंग ने?
1: यहाँ मैं यहाँ लगा दे नवम बिनानी में
0: होय होय ना मिंग दो मुक्तंग हना है बे
1: यहाँ मैं यहाँ लगा दे कि नवम बिना
0: नवरिबम बिना नवरिबम बिना ने गसी गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम दा कॉल तो बिरक पा करम बफम गी करी से ता बिजोइ नो
1: हाय जगे में नसुंगलांगिदा पुष्पारानीगा पुष्पारानी छप्पा वाखन अम्मा मिधी न अम्मा हाय बोलो ताजा के ने
0: नसुंग लांगी
1: आओ ना चुंग लांगे मैं मैं ये यंग कोई दे पंगे जब इसे या मैं अम्मा इंदा हफ्ते के
0: यानी यानी इसे दो मुक्तंग है ना है बिरामो वाकल ना
1: आ
0: अम्मा
1: पुष्पारानी छप्पा ने
0: ओए
1: वाखन अम्मा मिधी न अम्मा मसीबु पुंची हाय दुरा हाय बतो
0: होय होय मैं
1: आयुगान जी के मैं एक दा
0: माने माने यान फसे को कंजल सु इसे यान फसे न सु सक्तो पी गए को
1: तभी ने मुझे तो हंसा के भी
0: यानी यानी है बियो
1: ये जानु पा पेम चंदा इमोन पीस चिल्ला ये नॉन पीस वाला चिनी अंदेगी आई कोई इबो इबी आए मैं ना मसान गंदे ले दुमंगा कोई इबो भी आए मैं के मनाऊं मसान उपा नाऊं वही नाम तक हफ्ते का देगे तेरा साथ फम देगे इशा भाई बिता हफ्ते का ले दो ताई वह मैं यंग बल्ला ताजे लगे मैं
0: यानी यानी इमा रहो जी मा इबुक है ब्रा ना रहे ले है बता
1: आओ इबो ने
0: होय होय इबुक तो सु इशोर ना अथुप मतम दा हक्सांग पालक तो ना
1: होय
0: नॉर्मल ओइ ना मु के है नि हक्सांग फन ले बु ओरशनु को
1: फबा वो जरा के मैं मिशे ये ताजा रहा
0: थाके चेरी कॉल तो बिरक पता के चेरी इसे इसी कदल तम जरा आगे
1: थाके चाहिए मैं
0: मरम ना खन बिरक लिबे इसे इसी कदल तम जरी रेडियो बु मैं अपुन ना रेडियो बु ताबिरीबा मयाम मयामगा से पुनः तामिनासे

0: हेलो हेलो हेलो, लाइन ऐसी तक रे कोलेसी मुंगल को चगे। हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून
1: गुड
0: लेडीज की थारों
1: आफ्टरनून
0: के।
1: मिस।
0: गुड आफ्टरनून, फोन तो बिरक लिबा
1: मिस
0: कनो बिरक
1: फोन
0: नो
1: तो जरे बाई के मैं इजी आई कव आई के ले फम थवा के ले काई जाई।
0: इबे आई थौबाल के चले काई देगी।
1: हाय
0: इबे आई ना फोन तो बिरक पा करम बा फिल्म की करम बिषय ताबी दोइनो।
1: मिस लंबा फिल्म की पुष्प रानी ने थकवा तारा मरी नहीं पाम्बा था जा आई ने सब वही से जंग जंग ताजा के
0: लंबा फिल्म की तरह मरीनी पान में था जा।
1: हाय मिस।
0: हो सिक्सिबो कई दो बिरम नी नो
1: मिस लबुक
0: बिया सिबो।
1: तसलु ये लोग शुभ तो का कारा का साक्षार का ना तंग पो था जरा मत।
0: हो टाइमिंग सो याम चाना फोन पंगे क्वा
1: हाय
0: खोई
1: कोई
0: दाने।
1: जो कोई रे फोन से
0: होय
1: हंग
0: होय
1: दबा तो वो संग दबा लबुक से आयु नो तीन पारा समझा पने।
0: होय होय तब दब सुया दब नोंग मगी सिंथानी ibe na khan bi rakli ba ise ese kudol tam jara rakli ge awa potha bo oina nungai na tabiro
1: hoi miss tabi ning ba ma khatang ha pho ge te de hap sa ro ge
0: yani yani
1: a
0: habiro
1: ai ge ita tok pa sing ge bina khatang ha pa ga lu sin jara ge miss
0: hoi hoi kol tau birak pa thage cheri ise
1: kaga
0: ese
1: sari miss
0: thage cheri lamba film si dagi pusparani ki khonjal da yu gandhi na सैरेंग बा अमदी गोपी न सेरांग बा इसे ऐसी कुदल तमजरी ताविरसी।

0: हेलो हेलो, लाइन ऐसी या खिदब का लोई ना कॉलर ऐसी कॉल लखो चब हम से खिद्रे मतंगी कॉल ऐसी मुल खो चगे।
1: हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: खागा तरी मिस।
0: होय होय, फोन तो बिरक लिबा कनाओ बिरबनो।
1: मिस पु आहान बदा लाम ना नो जरी काय खुना जरी मिस
0: थागत
1: आई
0: पफुंदो
1: खुराई संग
0: सरी
1: में काय दे गी रोमावती थावांग जों ने मिस
0: रोमाबती रोमाबती ना ngasi
1: होय
0: call tau pirak pa karam ba film gi karam ba shei khan bi toy no
1: मिस पर ये मेरी कि ने मिस सिंगल कुंजवी आई ना सपा लाइव अपना तमलम बनी खानन तो वो दो अजू ताजे निंगे मिस
0: होय होय पर लोगी मेरी फिल्म से दगी लाइबकता तमलम बनी।
1: होय मिस
0: होय होय रोमावती हो जे कई तो बिरम ली बनो। गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम से नुगाई ने ताबिरम ली ब्रो।
1: ओ आई कहीं नहीं मिस की प्रोग्राम दिया तो मैं साइड ये इताजरम बा सब इंगां का लोई सिलगा दो मिस मरु मपांग अमन इधर हफ्ते के
0: यानी यानी हैप्पी हो
1: आई की न्यू सीज़र बा चंचन कानून बला देखी नोनी बला देखी लोइने ना रेडियो पर न्यू सीन ताबी रिवा पुनः मका मिस का लोइने ना ताज़े के मिस
0: ताकत चली मरुम ने खंबीर रख लिया इसे ऐसी ताज़े रख लगे थरुम कॉल तो ब्रेक तो ना थरुम चारुक या भी रख पा दुकी मते हनिया इतन ताकत चली
1: ताकत चली मिस
0: ताकत चली।

धन्यवाद आरके विद्यासना। यह आकाशवाणी इंफाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईकोम सिंह हिंगानवा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है गाने नए पुराने। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में इस गीत के साथ। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत जतिन ललित का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, गीतकार है HS बिहारी और संगीत OP नैयर का।

अभी आपने सुना फिल्म हम दिल दे चुके सनम से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत का गाया गीत। गीतकार थे महबूब और संगीत स्माइल दरबार का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के सांगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गाने नए पुराने। अब प्रस्तुत है फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश का गाया गीत। गीतकार है संतोष आनंद और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से सुजाता त्रिवेदी और कमाल खान की आवाजों में, गीतकार है महबूब और संगीत ए आर रहमान का।

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर हैं आरके विद्यासना। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इम्फाल एस जिला की सगोलमांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनब सिनामकोन विलेज की चिंखोंग दा इम्फाल एस कमांडो अमसुंग कुनिपान चुपा साम राइफल्स की अपुन बकांगबो मना ऑपरेशन जथाबद कुसुकुलाई के अमरुम फागले पुलिस की पावना हाई इंटेलिजेंस के खनब पाउ फंगबदगी ऑपरेशन अदुंग से यु अंगन बद चथखिबनी फागल वकुलाई सिंग अदुगि मन मैगजीन यावे एसएलआर राइफल अमा मैगजीन अनि यावे इनसास राइफल अमा मैगजीन यावे 9mm पिस्तोल अमा Pompey gun ama country made lead tail gun ama masung single barrel gun ani yauri hand grenade ahum amsung mortar shell ama nungmai maruni phumanga amati bulletproof jacket plate amasung helmet ani su yauri marak sida senapati jilagi liangmai taphau amasung kuki taphau gi marak tanga si yu angan bada yung khara mai taram le hairi thaudok adoda 9 mr gi akoi bada laibe yum ani mai na chakhi adomoi lama mai adukana थाबनो हाइब खंगबंगमद्री आइखैगे सेनापति पाउमिना हाय मै जाकबै थौदोक तुगे तुंगदम हफमदुआ जानु मै कापगे मखोलताखि चेनबनी हायना चिन चिंगनबसिं तानाबदा सीआरपीएफ के जवानम सोक्तना हौजिक सेनापति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द लाइकनरी हौजिक मफमदु शांति ओइरे हायरि ngak chenbagi akanba chekchen thorangal loina nanga chi ayu gari jamai angkhai imphal jiribam lambi da imphal ge damak jiribam ta dokre ai koi gi jiribam paumina haing ase jiribam ta dokhi ba gari singa dugi manung da lpg puba tankar kun thamanga petrol tankar kun thamanga diesel tankar kun taruk amsu hida amdi chana thangna ba tai polam ching puba gari sing yauri haujik su jiribam da po chai thanna yoba gari kai apan duna leri marak chida gari khara khara su imphalom da thokna ba ui hairi consumers club manipur lingkhat ke bagi kuntra manga sofa phongde jahan de ahing imphal west ke khumbung de leba brighter academy da pang thok lagani thauram duwal loina na consumer awareness program am su pang thokani केंद्र की ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय ने हिंदू नंगी कर्नाटक की मैसूर ट्राइबल लोल म्यूजियम की जाति धाकि मिफम पांथोलगनी मिफम ट्राइबल लोन सिंह डॉक्यूमेंटेशन तौदनाक सेंबुक हिंगत हमारे खन नईनगनी लेब तुम्हारे ट्राइबल म्यूजियम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की मपांगल हेन कनकलगनी मिफम प्रधानमंत्री ने इंग कुमजाली सिंह निफुतरेट फावदा विकसित भारत ओहेनब लौखलीब थौरांग मखाद भारत की महुसाद लेजरब ग्यान लेबाक सिंथुंग पुनः चौखटमीनबद कांगलू फुरुप चितहनब वखलों पांथोपनी मिफम से केंद्र की ट्राइबल अफेयर्स की राज्य मंत्री दुर्गा दास उइकी बिहार सरकार ने राज्य चलरीब परीक्षा सिस्टम मपुंग फानव होंदोंनब मियोई मंगान साब कमिटी सेमनब नोटिस थोखरे सुप्रीम कोर्ट की थबक तगी पोथारब जज नटग हाई कोर्ट की जज अमना लुचिंगदब कमिटी अदुना था अहुम की मनुंग मखोगी रिपोर्ट पिकटकनी Enforcement Directorate ki Lucknow Zonal Office nang asi Uttar Pradesh amsung Haryana gi mapam mapanda thiba humbagi thabak chathakre sachin naba input test credit ITC pass the week case kam ari line ana prevention of money laundering ek ki makhada Muzaffarnagar Ghaziabad amsung Faridabad ta thiba humbagi thabak adu chathakibani paulu chare

0: तुम्बा, तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी के बीच बहुत गहरी दोस्ती है।
1: हाँ, योग भी दोनों एक ही जगह में करते हैं।
0: हाँ, मैं तो अपने पीठ पर किताबों का बस्ता उठाकर ले जाते समय बहुत थक जाती हूँ, पीठ तक दुखने लगता है। तुम्हें तो कमर दर्द होता था ना?
1: अभी तो दर्द नहीं होता। जब से स्कूल में नो बैग डे शुरू हुआ है, तब से हर शनिवार को किताबों का बस्ता लेकर नहीं जाते। बहुत मजा आ गया है। हमारी माँ कहती है,
0: हाँ?
1: बच्चे कितने तकलीफ में हैं, किताबों और कॉपियों से पूरा भरकर भारी भारी बस्ते ले जाते समय में तो बहुत थक गई हूँ। अभी तो थकान थोड़ी कम हो गई है।
0: हाँ, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सभी विद्यार्थियों के माता पिता को राहत मिली है।
1: चाउबक की माँ तो बहुत खुश है, वो तो थोड़ी कमजोर भी है ना, इसलिए
0: अब खेलने का समय भी मिल गया है। शिक्षकों ने भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। यही नहीं, हस्त शिल्प की कलाएं भी सिखाते हैं। तुम्बा, मुझे तो कागज का फूल बनाना भी आ गया है। पिताजी के

0: मेज पर भी रखा है।
1: मेरा भी होता है। शिक्षकों ने हम लड़कों को भी खिलौना बनाना सिखाया है। बेनू, मेरे पिताजी के टोंड बहुत बड़े थे, क्या तुमने देखा था?
0: हाँ, देखा था,
1: मगर अब बड़ा नहीं है।
0: अच्छा,
1: योग करने से सब ठीक हो गया। स्कूल पहुंच गए, चलो क्लास में चलते हैं।
0: हाँ, चलते हैं। तुम्बा, गुरुजी आ गए।
2: शुभ प्रभात गुरुजी।
3: सुप्रभात, बैठो बैठो। आज का पाठ है योग और स्वास्थ्य।
1: गुरुजी, योग क्या है? योग के क्या क्या लाभ होते हैं, ये भी बताइए।
3: बताता हूँ। तुम सब ध्यान से सुनो। मनुष्य तीन अवयवों से बना है, शरीर, मन और आत्मा।
1: अच्छा,
3: इन तीनों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।
0: हाँ, वो क्या क्या नियम होते हैं गुरुजी, जरा विस्तार से बताइए।
3: तुम लोग ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ। शरीर के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए नीति नियमों का पालन करते रहना चाहिए। मन के लिए स्थिर बुद्धि और शांत मन से रहना चाहिए। और आत्मा को अच्छा रखने के लिए संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए।
1: आगे भी बताइए गुरुजी।
0: हाँ बताइए गुरुजी।
3: हाँ हाँ, बताता हूँ। भारतीय दर्शन शास्त्र में तीन तत्व आवश्यक माने गए हैं, कर्म, ज्ञान और शक्ति।
0: और गुरुजी, ये तो बहुत कठिन लगता है। हम तो बच्चे हैं ना, इसीलिए समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है।
3: अंधेरे में रोशनी लाते हैं तभी तो गुरु कहलाते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है उसी को तो समझाना है। मैं तुम लोगों को धीरे धीरे समझाता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनना।
1: जी गुरुजी।
3: कम आयु में ही परम ज्ञानी बनने वाले लोगों के नाम तुम लोगों ने नहीं सुना क्या?
1: सुना है गुरुजी।
0: हाँ।
3: अच्छा अच्छा, तुमने सुना है? फिर तो तुम ऐसे एक इंसान का नाम बताओ जिसे तुम जानते हो।
1: रामानुजन, जो गणित के विशेषज्ञ है।
3: बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। तुम्बा, तुमने सही कहा है।
1: जी गुरुजी।
3: जब वे बच्चे थे तभी से उन्हें गणित विषय बहुत प्रिय था। यही नहीं, बहुत ही कम आयु में उन्होंने बड़ी कक्षाओं के गणित के प्रश्नों को हल कर दिया था। उनका नाम विश्व प्रसिद्ध है। बस दो चार कठिन शब्दों के लिए परेशान नहीं होते।
1: अच्छा,
3: मैं तुम लोगों को आसान शब्दों में समझाऊंगा।
0: जी गुरुजी।
3: चलो अपना पाठ शुरू करते हैं।
0: तो गुरुजी, योग किसे कहते हैं, वो तो आपने बताया ही नहीं।
3: वही तो समझाने के लिए इतना कुछ बता रहा हूँ। तुम लोगों ने महर्षि पतंजलि का नाम सुना है?
1: सुना है गुरुजी।
0: हमारे पिताजी पतंजलि के बालों के तेल, खाने के तेल, रोटी बनाने के लिए आटा खरीद कर लाते हैं। क्या ये वही नाम है गुरुजी?
3: हाँ हाँ बेनू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गेरवे वस्त्र धारण करने वाले वही दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति ही है। योग के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है।
1: गुरुजी, धर्म, ज्ञान, शक्ति, ये तीनों है ना?
3: हाँ हाँ, यही है। इन तीनों को एक साथ जोड़कर रखने की साधना को ही योग कहते हैं। समझ गए तुम लोग योग किसे कहते हैं? अब समझ गए ना?
1: समझ गए गुरुजी।
3: अब मैं आगे का पाठ पढ़ाता हूँ। योग के 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों का नाम बताता हूँ। इन 8 अंगों के नाम बताता हूँ। पहला है यम, दूसरा है नियम।

0: तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है ध्यान, सातवां है धारणा और आठवां समाधि।
1: तो गुरुजी आसन क्या है बताइए ना।
0: आसन एक पारंपरिक व्यायाम है, इसका संबंध शरीर मन और आत्मा से है। आसन के लिए सांस का अभ्यास बहुत जरूरी है। सांस का अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होता है। आसन करते समय सांस का अभ्यास होता है, वह भी एक निश्चित नियम अनुसार, समझ गए ना?
2: गुरुजी प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा समझाइए।
0: ठीक है ठीक है। प्राणायाम का मतलब होता है सांस का अभ्यास करना।
2: अच्छा।
0: यहाँ मनुष्य का एक अभिनव अभ्यास होता है, जैसे जब हमें गुच्छा आता है तो हमारी सांसें फूल जाती है। ऐसा ना हो इसके लिए सांस का अभ्यास करते हैं। हमारा मन शांत करके धीरे धीरे सांस लेने से हमारे सोच विचार शांत हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ और खुशहाल हो जाता है।
1: और गुरुजी तब तो ये योग एक बहुत ही लाभदायक व्यायाम है ना गुरुजी?
0: बेनू तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो योग का अभ्यास विश्व भर में हो रहा है। अगर योग सही ढंग से करे तो भारी शरीर भी हल्का लगने लगता है। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब तो योग के बारे में और विस्तार से जानोगे, मुझसे ज्यादा तुम लोग जान जाओगे।
1: जी गुरुजी।
2: गुरुजी धारणा के बारे में भी थोड़ा समझाइए।
0: तुम लोग तो अभी सोते बच्चे हो, इसलिए मैं सरल शब्दों में बताता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। यह अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए होता है। धारणा संस्कृत भाषा का शब्द है।
2: अच्छा।
0: अंग्रेजी में इसको कलेक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कहते हैं।
1: अच्छा गुरुजी ये प्रत्याहार के बारे में भी थोड़ा समझाइए।
0: ठीक है बताता हूँ। प्रत्याहार का मतलब होता है खाद्य, ये भी संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। सरल शब्दों में कहे तो जो भी हम लोग हर दिन खाते हैं वह भी प्रत्याहार ही है। ज्यादा न खाना, शरीर के लिए लाभदायक चीजें ही चुनकर खाना, नशीली चीजें छोड़ना, सब इसके अंतर्गत आते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा गुरुजी, योग के बारे में थोड़ा सा ही सही पर आपके बताने से हमें समझ में आ गया है। अब तो समाधि के बारे में भी आप बताइए।
0: योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है, समाधि इसका आठवां और अंतिम अंग है। इसमें धैर्य और चेतना दोनों का समावेश है। आजकल योग के कई केंद्र खुले हैं।
1: गुरुजी
0: जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, योग के साथ अनेक चीजें जोड़कर हर कोई स्वस्थ रहने की प्रयास में लगा है।
2: गुरुजी लोग कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं, ये बात कहाँ तक सही है?
0: रोग कई प्रकार के होते हैं तोम्बा, योग ही इनको ठीक कर सकता है। ऐसा भी नहीं है योग ही इनको ठीक कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। अगर योग से ही सभी रोग का इलाज होने लगे तो अस्पतालों का क्या काम तुम्बा?
2: जी गुरुजी।
0: लोगों का बस यह मानना है कि कुछ सामान्य से रोगों का इलाज योग से होता है, जैसे वजन घटाना, जोरों के दर्द, ऐसे रोग ठीक होते हैं। कहते हैं कि भारी वजन के कारण होने वाली थकान भी ठीक होती है। और इसके साथ साथ ऐसा भी मानना है कि तनाव संबंधी रोग

0: भोग यानी मन का अशांत रहना, भूख प्यास ना लगना जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं।
1: गुरुजी, तब तो योग का अभ्यास करना बहुत ही लाभदायक है। योग से ही ठीक न होने वाले कई गंभीर रोग भी होंगे।
0: होते हैं बेनू, सरल शब्दों में कहे तो योग बस एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है। अगर स्वस्थ रहना है तो नियमित रूप से व्यायाम करना, अच्छा खाना खाना जरूरी है।
2: गुरुजी, मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए योग जो लाभ देते हैं उनके बारे में भी बताइए।
0: बताता हूँ। योग का नियमित अभ्यास करने से शरीर निरोग रहता है। स्वस्थ रहने के लिए अधिकतर लोग व्यायाम करते हैं ना? उससे शरीर को फुर्तीला और निरोग रखने में सहायता मिलती है।
1: जी गुरुजी, योग और व्यायाम करने से शरीर सुडोल बनता है।
0: हाँ।
1: और गुरुजी, मेरे कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं ना, इससे शरीर का आकार सुंदर बन जाता है। क्या ये बात सही है? आपसे जानना चाहती हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल सही है। सुंदर आकार का दिखना, जैसे मोटे तोंद का ना होना, बस वही है।
2: गुरुजी, आप बुरा मत मानिएगा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?
0: हाँ, क्यों नहीं, पूछो। तुम लोगों के प्रश्न का ही तो इंतजार है मुझे।
2: गुरुजी, आपका शरीर भी बहुत ही सुंदर और सुडोल दिखता है। आपके बाजुओं की मांसपेशियां भी काफी सुंदर दिखती हैं। क्या आप भी योग का अभ्यास करते हैं?
0: तुम्बा, तुम्हारा प्रश्न तो काफी मजेदार है। तुम ठीक कहते हो, मैं कभी कभी योग का अभ्यास भी कर लेता हूँ। मेरी बड़ी बड़ी बाजुएं, सुंदर मांसपेशियां, ये सब तो जिम का कमाल है।
2: अच्छा,
0: योग से तो रक्त साफ होता है। तारासन से शरीर में मन का सूक्ष्म भाग भरता है। वृक्षासन से शरीर सुंदर बन जाता है। वीरभद्रासन से शरीर और मन का कमजोर लगना ठीक हो जाता है। इन सभी कारणों से योग का स्वस्थ शरीर के साथ गहरा संबंध है। तुम सब अच्छी तरह से समझ गए ना?
2: जी गुरुजी। गुरु,
0: बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं।
2: जी गुरुजी। गुरु,

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯠꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न योग का अभ्यास करने से शरीर को क्या लाभ होता है फिर से सुनिए योग का अभ्यास करने से शरीर को क्या लाभ होता है
0: अचुंब पाखुम पीबीरक पसिंग की मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगत लब महिरोई सिंगदा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनी सुब अमसुंग अहुम सुब तारब सिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ
2: তাবিরে রেডিও ক্লাস চামড়ি হমফু শুভ তাঙ্কক আসিদা ক্লাস এইট কে হিন্দি লেশ

0: the strategic conference how to create amishung national security advisor Ajit Doval numin ene ki khongchatta ngasi China de thungkre security ki apun ba kangbu amana ngasi kangpok pe jila gi je songtul khunda thi umba ki thabak jatha pada yamla ba khuju khulai ke apakale police ki pauna hai akak numba pau ma phang badagi security post na je songtun da thi umba ki thabak jatha pada yamla ba kulai sing adu phagat ki bani kulai sing adu gi manuk da country ma 12 bor nongmai ani ka pa yari ba nongmai maro leasing ama chani kun manga charger yau ba wireless set taro golden antler telescope ama amasung bullet proof jacket tara ni fan yauri security forcing aduna kulai ching adu puduna thorakpa matamda maikai adumda leiba miya maru oina nupi chingna kulai ching adu pubai aroi haina lapi thinki adu maina mag security force da irang adu lakchin ki amaromda kakjing police commando ki kangbuna thiumba ki thabak jathabada imphal iski kiangwei wanglai kai dagi rpf pla gi miyoi ama masagi yumda gi phare pharba miyoi asidagi khuju kulai ke amarom phangki kulai singa dugi manung da ak rifle ama smg carbine ama tungan tungan ban nungmai ki magazine mapan nungmai maru satet kuntha tare tam sung bullet proof jacket ahum yauri imphal west police commando nangarang moidang pok maning lekai da asat ok sing sector pada miyoi ama 0.32 gi maru mari yau pa pistol ama ga konana phare pharba miyoi du ko ga thel laisram lekai da gin haidi ma ki mathak tha makha ta ba ang yoi ba thabak lokhat na ba tijin ba gi thabak sa thari सेनापति जिला की लियांगमई टफौ अमसुं कुकी टफौ की मरकता ngse yu angan bada yum kharam mai tharam le hadi thaudu atu ta 9 mr ki akoi bada lei ba yum ani maina sakhi adu maina mag mai edu kana na thaban hoi ba khangbangam dri ekhu ki senapati paumin hai mai sak pagi thaudu tu ki tungda mapham adu wai ta nongai ka pagi makhol ta ki jenab singh tanabada crpf ki jawan ama soktun haujik senapati district hospital le lekhnari haujik mapham adu shanti oi le hadi दिमापुर अमसुंग गुवाहाटी की दमक ngasi chu bus manga winger taret nungtilpung amada imphal thadokre bus manga adu da passenger samahumputara taret amasung winger taret adu da passenger humputara mathoi tongki amaromda guwahati da ki thorok ba bus sing chu imphal da thungkre मणिपुर एन आर सी तौदना मिकोक थीबारो हाइना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फियर डिलिमिटेशन चंगसी लगप खोजंग की सरुक थौबल कैथेल फम्बी अपुन इमा सिंगना नेशनल हाईवे तंखाई थिंगदुना खुलाव कया लाउकी खोजंग एन आर सी तौदना मिकोक थीबारो एन आर सी तौदना भोट तौब यारो अपुन की सक्तम कायब यारो खुलाव कया लाउकी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की मीटिंग मखा दंगसी यूनिवर्सिटी असिदा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डीआरआर क्लब अमा डीआरआर की स्किल डेवलपमेंट कोर्स अमसुंग अंडर ग्रेजुएट महिरुई सिंह की ओइबा 3 क्रेडिट डीआरआर सिलेबस संगदोक्रे सोशल वेलफेयर विभाग ने लमदम मसी की सोथर अब मियाम की दमक तुंगा तुंगान बा याई फथौरां कया पाइखतुन लागली मरक असिदा कना गुंब मियोय खरना बेनिफिशियरी सिंह दगी लाना सेल लौथोले हाइबगी पाउ पंगले सोशल वेलफेयर की मैके दगी याई पथरोंग सिंग सि फंगनाबा बेनिफिशियरी सिंग दगी फी लोबगी अयाबा फी बलेते मरमदुना मियामना अरान बतोरी बमियो सिंग असि दगी जेक्सिन बी हाइना सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर ना आफिल टोटी पागी मरक थना अत्यनबा ब्रेक अमा
1: मियाम द खंगन जबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स इम्फाल दा निंगथौ काब खुदिंगी नुंगथिलपुंग अनिदगी अहुम मखाई फाउबा रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी फम बहौजरे जिंदा सोइब लैबदगी हौरक पलेना सिंग पोकपदगी सोइरकपा मपुंग मरै फारकपदा थिनथबा नत्रगा इमुंग मनुंगी शुरोनदा लौनबा लैना सिंग लै हाइन चिंगनबा सिंगबु खंगदोकपा ज्ञान तामिनबा अमदी तौफम थोकपा थौरम सिंगगी दमक मियाम दा लाकपिनबा खंगनजरी मखाताबा कुपमरोलगी दमक रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी सेकंड फ्लोर न्यू ओपीडी ब्लॉक रिम्स इम्फाल दा लाकपिनबा निंगसिंग जरी
0: तबीब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दकिनी सेनापति जिला डा डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम रिवाइज लिसिंगनी कुंतरुक चनवा हौरगनी हाइना डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस ने लौटोकरे स्कीम असी केंद्र की सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्रालय की मखाद लेबा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन पाइकलक पनी Scheme basiki makada schedule kasam sung schedule tribe community singi madakta sahi amagi imungi income lupa lak manga ki makada leba amasung nyoi bagi punsi mang beya ba anaba singda selgi mateng pigani selgi mateng adu anaba adu ki lainagi matung ina

आकाशवाणी इम्फाल की मेघाश चामगोम दस मंगा दस दुखचरीबा एफ एम संगाई चैनल देखनी अदम थोरम ताबीरीबसी हौजिक ताबीर से डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर दा उखरुल जिला की चिठी अईबा एखोगी उखरुल की पाउमी सोटिंग सिमरी

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: आकाशवाणी इम्फाल हौजे निबिदांगी पुमा पलतारे मणिपुरी द पाओ ताबिरसी।
4: आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाओ पजरे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा की बंगलोर इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन आईडीपी तोान तोब मई कालूप उनक्रे उनबाद राज्य की कमिश्नर होम एंड अशोक कुमार जिला डेपुटी कमिश्नर सरुक याखे उनबाद आईडीपी माइकई हाँ मसा यू हंजिलना हटना थेनाब खुदचाब क्या वफम क्या पादी। सेक्यूरीटी की अपुब कांगी कांगी जिला की जी सोंतुल खुद तीहब की तब चटब खुजु कुला क्या फागल। पुलिस की पाउन हाई अकब पा फंगी सेक्यूरीटी फोर्स जे सोंतुल तीहब की तब चटब कुलाई फागतनी कुलाई कंट्रीम ट्वेल बोर नोमई अनी कापयारी नोमई मरु लिसिंग चनी कुन मंगा चार्जर याव वायरलेस सेट तरु गोल्डन एंटलर टेलीस्कोप बुलेट प्रूफ जैकेट तरह निपन यावरी। अमरमद कक्षिंग पुलिस कमांडो की कांगबू तीहब की तब चटब इम्फाल ईस्ट की क्यामगई अवंग RPF PLA की मई मसा मयूमी फारे पार्ब मई खुजु खुला क्या फंखी। खुलाई AK राइफल SMG कारबाइन तोान तोान नोमई की मेगजीन मापन नोमई मरु चार्टेड कुंठा तरीट बुलेट

कितना खूबसूरत गीत है ना। जी हाँ, मुझे भी बहुत ही खूबसूरत लगा और काश यूं ही ये जो प्यार है और गीतों का जो पिटारा है वो यूं ही चलता रहे। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम हर श्रृंगार में। और जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया हर श्रृंगार, और मैं हूँ आपके साथ रितिका। और जो गीत आपने सुना वो है फिल्म हम है राही प्यार के, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, नदीम श्रवण का संगीत, समीर का लिखा ये गीत और फिल्म आया किन पर, जी हाँ बहुत ही खूबसूरत अभिनेता अभिनेत्री आमिर खान और जूही चावला पर। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत ना अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उन्हीं से होती है। किसी का इंतज़ार, किसी के एक इशारे का इंतज़ार, और फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी हर छोटी बड़ी खुशी की वजह बन जाता है। और जब किसी से प्यार हो जाए तो उसकी सबसे ख़ास चीज़ क्या लगती है कि बस एक बार उसका चेहरा देखने को मिल जाए, है ना। बस घंटों घंटों में इसी ख्वाहिश में रहते हैं। तो जो हमारा अगला गीत है ना वो भी बिल्कुल और बिल्कुल इसी पर है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

1993 में आई फिल्म सैनिक से आपने ये गीत सुना, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। तो दोस्तों, हर श्रृंगार में छोड़े जाती हूँ आपको आखिरी गीत के साथ, और फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और जी हाँ, सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु

0: वर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन कॉप 17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representatives talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. India has stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav said this in Ulaanbaatar, Mongolia today. He was addressing the ministerial dialogue on innovative financial mechanisms for healthy land and drought resilience during the 17th session of the Conference of the Parties to the UN Convention to Combat Desertification. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India will amend existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised by companies seeking to set up manufacturing operations in the country.

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें नंबर्स पर फोन कर सकते हैं 2331-4444. दूसरा नंबर है 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने और हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और सबसे पहले नजर आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional groups of countries and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट आई. सेंसेक्स में लगभग 200 अंक की सुस्ती देखी गई, जबकि निफ्टी 24,219 अंक पर बंद हुआ. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 8 से 9 अतिरिक्त देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए प्रयास कर रहा है और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: Consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.22% यानी 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.14% यानी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला. मिड कैप सूचकांक में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की गिरावट आई. इससे पहले बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके. दोपहर के सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बढ़ने से दोनों सूचकांक नकारात्मक दायरे में चले गए और दिन भर बाजार दबाव में बने रहे.
0: So benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. The Sensex declined 172 points or 0.22% to close at 77,369. The Nifty dropped 33 points or 0.14% to settle at 24,219. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange showed mixed trend. The mid-cap 100 index added 0.1%, while the small-cap 100 index dipped 0.3%. Earlier, markets opened marginally up but failed to sustain their early gains. Both benchmark indices slipped into negative territory around the afternoon session as selling pressure intensified. The markets remained under pressure for the rest of the day.
1: सेंसेक्स सूचकांक की 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई. सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.3% की गिरावट देखी गई. वहीं बजाज फिनसर्व में 1.2% और ट्रेंड में 0.9% की सुस्ती आई. इसके विपरीत टाटा स्टील में 1.9%, HCL टेक में 1.3% और इंफोसिस में 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of 28 sectors registered losses. Among the top underperformers, insurance decreased 0.9%, PSU banks as well as housing finance shed 0.8%, and consumer durables fell 0.4%. In contrast, metal advanced 1.4%, telecommunications rose 1%, and commodities added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,467 companies declined, 1,973 advanced, and 248 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ. शिशिर, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज कारोबार का इस सप्ताह का पहला दिन रहा और गिरावट के साथ इसकी हमने देखी, जो बंद जब बाजार बंद हुआ गिरावट के साथ बंद हुआ, और पिछला सप्ताह भी जो था मिला जुला कारोबार हमने देखा था, उसमें क्या कहेंगे इस पर आप?
2: देखिए, बाजार को एक कहते हैं ना स्पष्ट दिशा की जरूरत है, और स्पष्ट दिशा मिल नहीं पा रहा है क्योंकि आज अचानक पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है. अब अभी हम लोग बात करें हॉर्मुज की, बात करें, अब वहां पर कहा गया है कि जो भी जहाज गुजरेंगे उनको एक शुल्क अदा करनी है. दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है कि वो जो है वो सैंक्शन प्रतिबंध की बात कर रहे हैं. तो इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो बाजार के अनुकूल नहीं है, जिसका असर आप देख रहे हैं कि बाजार आज, आप देखिए, आपने जैसा शुरू में कहा कि बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसको वो बनाए नहीं रख सका क्योंकि परिस्थितियां और जो कहते ना कि संकेत जो थे वो बहुत पक्ष में नहीं थे. इन्हीं सब का नतीजा ये रहा कि आज बाजार में हमें जो है गिरावट, हालांकि गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं है, मामूली गिरावट है. एक महत्वपूर्ण जो आज तथ्य मुझे लगा कि है वो है आपका तकनीकी जो आईटी कंपनियों के शेयर हैं, उनमें हमने आज तेजी देखी. जो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा माहौल बन रहा है कि आईटी कंपनियां जो हैं वो पिछड़ रही हैं, एआई के मामले में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी आईटी सेक्टर में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी आती है, थोड़ी सी भी बेहतरी स्थिति देखने को मिलती है तो उसका हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा. और जहां तक सवाल है वित्तीय सेवाओं की बात हम लोग करें, चाहे सरकारी बैंकों की बात करें या निजी बैंकों की बात करें, NBFCs की बात करें, वहां पर जो हमने गिरावट देखी है, अब वहां पर एक ये भी चिंता जो है वो सताने लगी कि हमारा इंटरेस्ट मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ने की तो बात है, लेकिन फिलहाल जो पहली और दूसरी तिमाही जो है वहां

0: scope for further enhancing the cooperation in terms of the trade and investment. So we have to look for market which are already there, but we have to go deep into that market. At the same time, we also have to look for the newer market, whether we talk about the Latin America, whether we talk about African countries, where we talk about some of the Asian economies also, where we have not so good business relationship, there can be expand into that. So that is why the focus number one, going deep into wherever we have good relationship, at the same time looking for the newer market. And since we are talking about Viksit Bharat by 2047, we have to attract more and more investment. So these are the issues why we are seeing that our minister is going there. And please remember, the finance minister is also going to travel to Canada and US, and there she is going to talk about investment as well as the trade.
1: Right. And Commerce and Industry Minister Piyush Goyal as well said that India will amend the existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised by companies seeking to set up manufacturing operations in the country. Speaking during a program in Tokyo, Mr. Goyal said that within the next 2 months, India will amend its regulations. The minister said the government was willing to address issues faced by investors where the demands were fair and justified.
2: शुदा मार्केट मंत्र कार्यक्रम में शेयर बाजार से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं और नंबर है 2331444 2331 0481 और तीसरा नंबर है 2371 7106 इन नंबर से पहले 011 लगाना आप ना भूलें और आगे बढ़ते हैं खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट की दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों को और सशक्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों की तैयारियों पर चर्चा की गई डॉक्टर जयशंकर ने भारत रूस की मजबूत और बढ़ती साझेदारी विशेष रूप से आर्थिक सहयोग व्यापार तथा ऊर्जा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि व्यापार ऊर्जा और परमाणु सहयोग सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है शशि जी विदेश मंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या मायने हैं इन तमाम बातों के
0: देखिए प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की जो बैठक होनी है उसके लिए एक आधार तैयार किया जा रहा है इस बैठक के जरिए इसके अलावा जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जो आपने एक पैराग्राफ में पढ़ा कि उन्होंने ज्यादा खाद की बात की उर्वरक देने की बात की है देखिए जब से रूस और यूक्रेन वाली लड़ाई हुई उससे हमारे यूरिया की आपूर्ति के ऊपर और बाकी भी जो कंपोनेंट है उसकी आपूर्ति पर असर पड़ा और उसका असर ये हुआ कि उसके दाम काफी बढ़े उसके दाम बढ़ने का नुकसान ये हुआ कि हमारा जो सब्सिडी पे खर्च है वो काफी बढ़ा है और कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि जो 3,300 या 3,200 रुपए का जो पड़ रहा है उसे हम 250-300 रुपए या 350 रुपए में बेच रहे हैं मतलब दसवें हिस्से में हम उसको बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए सब्सिडी का बोझ भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में रूस का ये कहना कि वो ज्यादा उर्वरक की आपूर्ति के लिए तैयार है वो काफी महत्वपूर्ण बनता है कई क्षेत्रों में उन्होंने हमारे साथ रणनीतिक साझेदारी की है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री और उनकी मुलाकात के पहले का एक आधार तैयार हो रहा है उम्मीद हम कर सकते हैं कि वहां पर कुछ नए समझौते देखने को मिलेंगे
2: और इस बीच हमारे आज के पहले कॉलर हैं शंकर भोपाल से आपका स्वागत है सवाल पूछिए शंकर सवाल पूछिए आपका
3: मेरी आवाज आ रही
2: जी बिल्कुल आ रही है सवाल पूछिए
3: मेरा सवाल सर ये जो हमारे यहाँ चाइना से और मोस्टली चाइना से जो सामान आता है फिनिश्ड गुड्स कच्चा सामान नहीं फिनिश्ड गुड्स और उसको पे ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा दी जाती जिससे हमारे देश में सामान बने और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और इसी इसी सिलसिले में अगर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के इंपोर्ट में कुछ रियायत दे दी जाए या जीरो ड्यूटी कर दी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी अपने आप क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे भी इंडिया में ड्यूटी है और कच्चे फिनिश गुड्स पे तैयार सामान पे चाइना से ड्यूटी उतनी है जितनी समझ लीजिए दूसरे देशों से जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उनसे तो ऐसा क्यों उन पर ड्यूटी बढ़ा दें तो अपने आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कम हो जाएंगे चाइना से और यहाँ बनने की तैयारी हो जाएगी
0: शंकर जी आपका सुझाव तो अच्छा है लेकिन इसकी एक कुछ कहते हैं ना व्यावहारिक भी दिक्कतें हैं क्योंकि आप किसी भी सामान पर जब शुल्क

0: करते हैं, तो उसमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि उस देश के साथ जो भी आपका व्यापार है वो कितना हद तक प्रभावित होता है। तो जो भी आप कहते हैं कि आप वहाँ से आयात कर रहे हैं उसको आप और महंगा कर दीजिए, ये भी ध्यान में रखिए कि हम चीन से बड़े पैमाने पर कच्चा सामान आयात कर रहे हैं, जैसे आपका API है या फिर चिप्स हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कैपिटल गुड्स हैं। अब यदि उन सामानों पर यदि वो ड्यूटी बढ़ा देते हैं रेसिप्रोकल वे में, तो फिर नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए करना होगा, और ये आप ध्यान में रखिए कि हमारे व्यापार का जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके का है।
1: आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.1% लुढ़क गया और जापान का निक्केई 225 आज 0.7% नीचे आ गया। दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हैं जो फोन लाइन पर, सतपाल। सतपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
2: सर नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: सर। आजकल जो लड़ाई का माहौल चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको ऐसे कंसिडर करते हुए तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या निफ्टी वगैरह कुछ बढ़ेगा? या आपने जो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, इसके ऊपर बताइएगा कि कौन सा फैक्टर सही रहेगा?
0: सतपाल जी देखिए, दोनों देशों के बीच जिस तरीके के तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसमें किसी भी तरीके की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, क्योंकि हर रोज एक नई परिस्थिति हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आज की बात करूं तो आज ईरान ने कहा कि वो जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है वहां से जो भी जहाज जाएंगे उनसे वो पैसा लेंगे, तो ये एक अलग अलग तरीके की परिस्थिति है। अब प्रश्न यह है कि बाजार को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बीते कुछ समय से हमने शेयर बाजार में थोड़ी एक बेहतरी देखी है। अब शेयर बाजार काफी हद तक लड़ाई की बातों को जो है वो हम ये नहीं कह रहे, पूरी तरह से उसने डिस्काउंट कर दिया, दरकिनार कर दिया, अभी भी कुछ चीजों को है। और मेरी हमेशा से राय रही है कि इस तरह की परिस्थितियों में अगर आप बाजार में आना चाहते हैं तो छोटे छोटे किस्तों में आप लार्ज कैप में आप पैसा लगाएं, और वो भी जब बाजार में एक गिरावट का माहौल बना हो वहां पर आप खरीदें छोटे छोटे किस्तों में जब जब गिरावट आए। इससे आपको क्या होगा कि आपकी लागत में एवरेजिंग का मौका मिलेगा और आपके लिए कुल लागत जो है वो कम हो सकेगा। तो मेरा सुझाव यह है लार्ज कैप है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करें जो डाइवर्सिफाइड फंड हो और डेट और इक्विटी दोनों का हो, बैलेंस फंड जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहां पर आपके लिए बेहतर विकल्प होगा।
3: नेक्स्ट कॉलर इज के शुक्ला फ्रॉम महाराष्ट्र। मिस्टर शुक्ला
4: जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले साल महंगाई लगभग 7% था, इस बार दो तीन महीने में लगभग 10-12% बढ़ गया, क्या इसका पूरा कारण ये जो पेट्रोलियम का प्रॉब्लम है दूसरे कंट्री से आता है उसका, या फिर और कोई कारण है?
0: शुक्ला साहब, थोड़ा सा मैं क्षमा के साथ आपके आंकड़े को थोड़ा सही करना चाहूंगा कि खुदरा महंगाई दर जो है, अगर जो ताजा आंकड़े जो कि जुलाई के हैं वो 4.5 के करीब में है, तो ये जो 10% की आपने बात कही है वो उचित नहीं है यहाँ पर उसको जिक्र करना। तो ये जो 4.5% है इसमें दो तीन चीजों की महंगाई दर ज्यादा है। आप प्याज की बात कर लीजिए, चीनी की बात कर लीजिए, इसके अलावा हम सोने और चांदी की बात कर लें, और हमारे आपके घरों में जो लहसुन और अदरक का जो इस्तेमाल होता है इसकी महंगाई दर काफी बढ़ गई है, तो हमारी थाली के बजट पर जरूर इसका असर पड़ा है। लेकिन कुल महंगाई दर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% के करीब में है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो दाम बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के, उसका असर जो है वो कुछ हद तक हमें जरूर देखने को मिला है, क्योंकि डीजल का जब हम कहते हैं कि डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे सामान की आवाजाही की लागत बढ़ती है और उससे महंगाई दर पर असर पड़ता है। लेकिन अभी भी जो 6% हमारे लिए महंगाई दर की सीमा होती है जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में जो एक समझौता है वहां पर हम नहीं पहुंचे, 4% से ज्यादा है, तो वहां पर जरूर हमें सोचने की जरूरत होती है।
3: नेक्स्ट कॉलर इज सदबुद्धि फ्रॉम चेन्नई, वेलकम।
5: हेलो सर, गुड इवनिंग टीम, मार्केट मंत्रा टीम। दिस इज रिगार्डिंग दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, रिसेंटली वी हैव इंप्लीमेंटेड इन गुजरात, what time it will take the effect and when we are going to lead in the semiconductor chips preparation, sir?
0: Sir, I think by 27, by the next year, we will be in a position to export also.

0: after meeting the domestic requirement. And there are other plants also which are coming into existence. Two or three have already started production. So I believe by 27 and by 28, we will be in a better position in terms of the semiconductor, or what you can call it as a chips.
1: Moving on, Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson, Ebrahim Rezai, stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. According to Strait broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. On the other hand, United States Treasury Secretary Scott Bessent is set to unveil a new package of sanctions against Iran tonight. And in the oil sector, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.6% down at $92.87 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 2.3% lower at $85.08 per barrel when reports last came in. Shishiji, Iran as well, kind of throwing tantrums every day. Today something, tomorrow something, day after something. Now this new fees coming into picture. We'll come to that. But in the meanwhile, we are joined in by our next caller, Sainath from Thane. Mr. Sainath.
2: Hello.
1: Yeah, Mr. Sainath.
2: My question is that the company jo dividend deti a share dividend wo 15H form senior citizen ko valid hai ki form number 121 kuch change ho gaya.
0: ये चेंज हो गया है क्योंकि आयकर कानून 2025 लागू हुआ है 1 अप्रैल 2026 से. तो उसके तहत आपको जो फॉर्म है, देखिए फॉर्म वही है, बस फर्क ये है कि अब वो एक नई संख्या के साथ है. तो जो आपने 120 121 की बात की, ऐसा ही कुछ संख्या है जो आपको भरना होगा. और जो आपको डिविडेंड है, उस समय में आपके पास एक चिट्ठी भी आएगी कंपनी की तरफ से कि अगर आप उसके आपकी आय जो है वो कर की सीमा से कम है तो आप वो फॉर्म भर दीजिए, आपके डिविडेंड पर टैक्स नहीं.
1: Yeah, Shishiji, continuing with our earlier discussions, now Iran kind of trying to levy new fees from any country the vessels of any country which is transiting the Strait of Hormuz. Now, this is something which is of some concern. And also, the state broadcaster says that approval of Article 3 strategic action is to ensure the security and progress of Strait of Hormuz plan. Now, this is something of some concern. And again, we'll come to that. But we have been joined in by our new caller, Kaushik from Kolkata. Kaushik.
3: सवाल और एक बार बोलिए
0: जी. सवाल पूछिए कौशिक जी.
3: हेलो.
0: हाँ कौशिक जी, सवाल पूछिए.
3: अच्छा सर, मेरा दो सवाल है
0: जी.
3: एक है जो इन्फ्लेशन 4.5 का जो परसेंटेज है, इसमें कौन सी जो बारीकियां हैं इसमें देखी जाती हैं? क्योंकि एडुकेशन और जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज का इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा है, एक तो ये. दूसरा सवाल ये है कि आज ब्रेंट क्रूड का प्राइस फॉल किया है, फिर भी निफ्टी फॉल किया है, तो इसमें क्या इंटरलिंकिंग है ये समझ में नहीं आया आज.
0: कौशिक जी, पहला सवाल जो आपने महंगाई दर को लेकर के कहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका महंगाई दर को लेकर के है, वहां पर सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के, उसके अलावा जो ताजा आंकड़े हैं उसमें प्याज की भी एक भूमिका रही है, जिसकी कीमतों में हमने बढ़त देखी. लगभग 22% वहां महंगाई दर है, जबकि चांदी की महंगाई दर 100% के ऊपर है. आपने जो जिक्र किया शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, वहां पर महंगाई दर है लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा तनाव ये चिंता लें. दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा निफ्टी बनाम कच्चे तेल को लेकर के, इसका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है. ये परिस्थितियां अलग थी जिसकी वजह से निफ्टी में आपने गिरावट देखी.
4: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 1% के उछाल के साथ 1,62,154 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.5% नीचे आकर 2,45,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. शिशिर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए

0: हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी. धन्यवाद. थैंक यू शिशिर जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional group of countries, and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
0: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
3: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में. और ये कार्यक्रम है हर श्रृंगार नहीं, जी हाँ, वो तो 10:30 था और अब 11:44 हो चुके हैं. और ये कार्यक्रम है आपका अपना मनपसंद गीत मेरे मन मीत. और रेडियो स्टेशन का जो चैनल है वो बिल्कुल वही आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम. और मैं हूँ आपके साथ रितिका.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। राखी आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा कार्यक्रम लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ और अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2000

2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

अमृत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दिन भर दिमाग में न जाने कितनी बातें उलझती रहती हैं, कुछ बीती हुई, कुछ आने वाले कल की और कुछ ऐसी जिनका कोई जवाब नहीं होता, मगर रात होते ही जैसे मन की सारी हलचल थमने लगती है। दिल और दिमाग दोनों बस थोड़ा सुकून चाहते हैं, एक ऐसी खामोशी जहां कोई सवाल ना हो, कोई चिंता ना हो, बस नींद हो, चैन हो और अपने आप से कुछ पल की मुलाकात हो।

यादों तक ले जाता है कभी चेहरे पर मुस्कान ला देता है और कभी मन के बोझ को थोड़ा हल्का कर देता है शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता महसूस किया जाता है

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम। इन पंक्तियों में आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि उस शख्स की तस्वीर भी संजोए है जो हर सुबह शाम दिल की आंखों में बसा रहता है। नजरों के सामने ना होकर भी वो हर पल सामने सा लगता है, जैसे दर्पण में अपनी ही परछाई के साथ किसी अपने की झलक दिखाई दे जाए। आरोप फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा माया गोविंद ने और संगीत दिया भूपेन हजारिका ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कहते हैं ना जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमें मिलती है, जिंदगी तो वैसी बन जाती है जैसा हमारा नजरिया उसे देखने का होता है। रास्ते में मुश्किलें होंगी, कभी कदम लड़खड़ाएंगे, कभी मंजिल दूर नजर आएगी और कभी लगेगा कि सफर कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे ही पलों में अगर हम चेहरे पर मुस्कान और होठों पर कोई प्यारी सी धुन सजा लें तो वही मुश्किल रास्ता थोड़ा आसान लगने लगता है।

अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक एक बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्ले ऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

वो कौन थी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती वो यादों में ठहर जाने वाला

एक खूबसूरत एहसास बन जाती हैं। ऐसी ही किसी नर्म, खामोश और हसीन रात में दिल कह उठता है, जो पल सामने है उसे जी भरकर जी लिया जाए, क्योंकि कौन जाने फिर ऐसा मौसम मिले ना मिले, ऐसी मुलाकात हो ना हो।

संजोग फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली जरूर पड़ जाती हैं, मगर दिल से कभी मिटती नहीं। फिर किसी शाम कोई पुराना गीत सुनाई देता है और लगता है जैसे बीता हुआ कल अचानक लौट आया हो। वही चेहरे, वही मुलाकातें, वही अधूरी सी बातें, सब कुछ एक पल में यादों की किताबों के पन्नों से निकलकर सामने आ जाता है और फिर दिल खामोशी से कह उठता है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। सच्ची तो है पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो हमें हमारे बीते हुए कल से मिला देते हैं।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कभी कभी दिल की राह पर चलते हुए इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब मोहब्बत उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन बन गई। फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दिल अपनी ही धुन में मगन रहता है। और जब प्रेम अपने पूरे रंग में उतर आए तो इंसान से बस यही गुजारिश होती है कि मेरी इस दीवानगी को मेरी भूल मत समझना, मेरे प्यार को कोई इल्जाम मत देना।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं

अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

हुआ है 1:31 और ठीक 37 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

साथी फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। दिन भर जिंदगी हमें अपने साथ दौड़ाती रहती है, दिमाग में काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, बीती बातें और आने वाले कल की फिक्र, न जाने कितने ख्याल एक साथ चलते रहते हैं, मगर रात की खामोशी में जैसे मन धीरे धीरे इन सबसे किनारा करने लगता है, तब न किसी से कुछ कहना होता है, न किसी को कुछ समझाना, बस दिल चाहता है कि कुछ पल आंखें बंद हों और भीतर पसरा शोर थम जाए। शायद इसीलिए रात सिर्फ सोने का वक्त नहीं होती, ये खुद से मिलने और सुकून तलाशने का वक्त भी होती है।

देवियां फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और जब रात, खामोशी और कोई प्यारा सा फिल्मी गीत साथ हो तो लगता है जैसे दिन भर की सारी थकान धीरे धीरे घुल रही हो और दिल को वही सुकून मिल रहा हो जिसकी उसे पूरे दिन तलाश थी।

गाइड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में. शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने. दिन ढल जाए रात ना जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए. कुछ शामें जाने क्यों इतनी लंबी हो जाती हैं. सूरज तो ढल जाता है मगर इंतजार की घड़ियां नहीं ढलती. रात गहराती जाती है और दिल बस यही सोचता रहता है, शायद अब तुम आ जाओ, शायद अब इस तन्हाई को तुम्हारी आहट मिल जाए. लेकिन जब कोई नहीं आता तो साथ रह जाती है बस उसकी यादें, और फिर वही यादें रात भर दिल को जगाए रखती हैं.

ज्यूल थीफ फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:52 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लाद

0: व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिव हरी ने। ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, इस पंक्ति में प्रेम की वो खूबसूरत हैरानी है जहां दो लोग साथ चलते चलते कब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे कोई सफर मंजिल के लिए शुरू हुआ था मगर रास्ते में ही साथ इतना प्यारा लगने लगा कि अब मंजिल से ज्यादा उस हम सफर की अहमियत हो गई।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आंधी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 54 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये पंक्ति जिंदगी की उस सच्चाई को बहुत खूबसूरती से कहती है कि इंसान को सब कुछ एक साथ शायद ही कभी मिल पाता है। किसी के पास प्यार होता है तो सुकून कम, किसी के पास दौलत होती है तो अपनापन कम, और किसी के पास रिश्ते होते हैं तो समय कम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने गाना सुना भूपिंदर की आवाज में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं मेरे साथ और सुन रहे हैं रात सुरमई

और नितिन मुकेश की आवाज में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ओ सनम हम दोनों साथ रहें जन्म जन्म, इस भाव में दो दिलों की वही मासूम ख्वाहिश है कि वक्त बदलता रहे, मौसम बदलते रहे, मगर साथ और अपनापन यूं ही बना रहे।

लावारिस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। अनजान ने लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुरभि सक्सेना के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री

0: अंग सीमा मुद्दे के साथ-साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: We are a young country.
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे करेगा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कम्बोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
5: Our economic cooperation, trade, energy,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। कहते हैं कि मोहब्बत को हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती, कभी एक नजर, कभी एक मुस्कान और कभी बस एक छोटा सा इशारा दिल की पूरी बात कह जाता है। तो इस खूबसूरत रात में अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा शख्स है जिसकी एक झलक की आपकी शाम को, आपकी रात को, आपके पूरे जीवन को हसीन और खूबसूरत बना देती है, तो आज एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि वो मुझको आंख भर कर देखता है, वो मुझको आंख भर कर देखता है, बड़ी हसरत से खंजर देखता है, ना कोई देख सकता है वहां तक जहां तक एक शायर देखता है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, याद कीजिए उस चेहरे को और सुनिए इशारा फिल्म का ये गीत रफी साहब की आवाज में।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि किसी की आंखों

अगर सच्ची मोहब्बत उतर आए तो बिना कुछ कहे भी दिल की सारी बातें बयां हो जाती हैं, और कुछ नज़रें ऐसी होती हैं जिसमें वो शरारत भरी होती है, वो प्यार होता है, वो कशिश होती है कि नज़रें चाह कर भी हट नहीं पाती। और शायद इसी एहसास का नाम है इश्क, जहाँ एक नज़र दिल को बेचैन कर देती है और एक मुस्कान ज़िंदगी को खुशनुमा बना देती है। तो चलिए सुनते हैं ऐसी ही खूबसूरत शरारत भरी, आंखों को मुस्कुराहट को याद करते हुए कैसे गीत की तरफ आपको लिए चलते हैं, जिसे आवाज़ दी है मुकेश साहब ने और फिल्म है जंगली।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30

10 सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात

0: मेरा किरदार जब भी जिंदगी से बात करता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि जान लूँ उसको, लेकिन मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि उसको जान लूँ, लेकिन वो मिलने पर बड़ी कारीगरी से बात करता है, बड़ी मासूमियत से, सादगी से बात करता है। मेरा किरदार जब भी जिंदगी से बात करता है।
1: मिलते ही नजर

तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है। तू पत्थर को भी छू ले तो बांसुरी का स्वर निकलता है। जमाना कोशिशें तो लाख करता है डराने की, तुझे जब याद करता हूं तो सारा डर निकलता है। यहीं रहती हो तुम खुशबू हवाओं की बताती है, यहीं रहती हो तुम खुशबू हवाओं की बताती है। यहाँ जिस जर्रे से मिलिए वही शायर निकलता है। तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तो पत्थर को भी छूले तो बांसुरी का स्वर निकलता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं हमराही और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हमको सिखाया वक्त ने तुमको किताब ने, इस दिल में बहुत देर तक सनसनी रही, पन्ने यूं खोले याद के सूखे गुलाब ने, हालात ने हर रंग को बदरंग कर दिया, सौंपे थे जो भी रंग हमें आफताब ने, हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हमको सिखाया वक्त ने तुमको किताब ने, दो झील एक चांद खिले फूल तितलियां, क्या क्या छुपा रखा था तुम्हारे नकाब ने, क्या क्या छुपा रखा था तुम्हारे नकाब ने।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब कहा है किसी ने कि जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम रहें जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे, जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे। ऐ मेरे दुश्मन तुझी ने दी मुझे जिंदा दिली, मैं अगर जिंदा रहूं तो भी सदा जिंदा रहे, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे, हम रहें जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे, जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे।

वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था जलना पड़ा मुझे। महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास, अपना ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था जलना पड़ा मुझे। सूरज ने छुपते छुपते उजागर किया था तो, लेकिन तमाम रात पिघलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था जलना पड़ा मुझे। जी हाँ, इसी के साथ हमराही का ये सफ़र यहीं तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हमारी आपकी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरे, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे कर रहा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
1: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
5: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing yesterday on a 2-day visit.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं लव स्टोरी फिल्म के इस गाने के साथ।

अलग कर रखा है, मैंने अपनी रूह को अपने तन से अलग कर रखा है। यूं ही नहीं जैसे जिस्म को पैराहन से अलग कर रखा है। मेरे लफ्जों से गुजरो मुझको दर गुजरो कि मैंने फन के पराए में खुद को फन से अलग कर रखा है। मैंने अपनी रूह को अपने तन से अलग कर रखा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। आप सुन रहे हैं अरुणिमा सुरभि के साथ। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल हो। तुम्हारी तेग अदा का फसाना सुनाता हूँ, मुझे तो कत्ल करो देखूं तो कैसे कातिल हो, तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल हो। हमारी आंख के पर्दे में तुम छुपो देखो, तुम्हारी ऐसी हो लैला तो ऐसी महमिल हो, तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल हो, तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है कलाकार।

अब मंजिले सदा से सफर कर रहे हैं हम अब मंजिले सदा से सफर कर रहे हैं हम यानी दिले सुकूत में घर कर रहे हैं हम खोया है कुछ जरूर जो उसकी तलाश में हर चीज को इधर से उधर कर रहे हैं हम अब मंजिले सदा से सफर कर रहे हैं हम

चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया। मैं बहुत खुश था कड़ी धूप के सन्नाटे में, क्योंकि तेरी याद का बादल मेरे सर पर आया। चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया।

अरुणिमा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, खैर औरों ने भी तो चाहा है तुझसा होना, ये अलग बात की मुमकिन नहीं ऐसा होना। देखता और न ठहरता तो कोई बात भी थी, जिसने देखा ही नहीं उससे खफा क्या होना। तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, बस किसी वक्त बुरा लगता है तन्हा होना। खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, ये अलग बात की मुमकिन नहीं ऐसा होना।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों उनसे निपटने के उपाय समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपानिया के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो एश्विले और न्यूयॉर्क जाएंगी यह यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को सम्पन्न होगी विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे

0: राष्ट्र की पूरक है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को खोलना है। उन्होंने दूसरे देशों को भी चेतावनी देते हुए ईरान के साथ आर्थिक संबंध सीमित रखने को कहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमरीका की चेतावनी को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को रोकने की स्थिति में नहीं है। श्री गालिबाफ ने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने भी अमरीकी बयानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए नई प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में खेलो भारत अभियान पर भी चर्चा की गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। यूपीआई अब भारत के साथ साथ दुनिया की कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Himakshi Pawar. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. On the first day of the conference, discussions focused on critical aspects of national security, including response to counter-terrorism challenges, fusion analysis and operationalization of intelligence through the multi-agency center, a vision document on narcotics control, detection and deportation of illegal migrants, a policy framework to combat cybercrime and proxy warfare by Pakistan. On the second day today, the conference will focus on the threat landscape from sub-aerial systems and formulating countermeasures, securing the blue economy, information warfare and its implications on national security and the need for a biosecurity framework. Pursuant to the directions of Prime Minister Narendra Modi, the conference is being held every year in a hybrid format since 2021 with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of cutting-edge officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। नमस्कार।

भोर सुहानी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बहुत ही खूब लिखा है किसी ने कि इन मौसमों में नाचते गाते रहेंगे हम, इन मौसमों में नाचते गाते रहेंगे हम, हंसते रहेंगे शोर मचाते रहेंगे हम। निकले तो इस तरह कि दिखाई नहीं दिए, डूबे तो देर तक नजर आते रहेंगे हम। लब सूख क्यों न जाए, गला बैठ क्यों न जाए, दिल में है जो सवाल उठाते रहेंगे हम। हंसते रहेंगे शोर मचाते रहेंगे हम, इन मौसमों में नाचते गाते रहेंगे हम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।